0: जो बन हारिया
1: पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया ले बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाव।

आपो आखे अपना जिस ना ही सोचन गड्डी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है जा रहना ना ही ऐत जग ता कायत गार बहंदी है मंदा किसे ना आखी है।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोला जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईऐ जस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजा प्यारिया सोह साहिबजादिया, चालिया मुकतिया हठिया जापिया तपिया, जिन्ना नाम जापिया वंड छगया। देख चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चर कड़िया ते चढ़े आ रहा नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी किस्सा स्वासा नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवे चित आमन का सदका सर्व सुख होवे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कर चिहन यर बरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कहना सकत केह अचल मूरत यन पाओ प्रकाश अमितोज कह जैन कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम भरनत सुमत सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे अनपौ निजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने संता मानो दूता डानो एह कोटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाओ पलो सौ केस चबर कर फेरी हम कूकर तेरे दरबार पौ कह आगे बदन पसार पूरब जन्म हम तुमरे सेवक अब तौ मिटिया ना जाई तेरे द्वारे तुन सहज की मथ मेरे दगाई दागे होहे सो रन मह जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछन हर लय खजान पाई कोठरे मह कोठरी परम कोठी विचार गुरदीनी बस्त कबीर कौ ले वाहो बस्त समार कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया थिरता का सोहाग बहोर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे लिख कत ना छूटिया खिन खिन भूलनहार बखसनहार बखस नानक पार उतार सुकह टल गुर सेवियन एह इस सहज सोभाए दर्शन परस आय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सहो कुर सहो चटिया तुद डठे सच्चे पातशाह
ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ

मुकंद मुकंद जपहो संसारा संसार बिन मुकंद तन होए आहार सोई मुकंद मुकत का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता मुकंद मुकंद जपहो संसार बिन मुकंद तन होए आहार सोई मुकंद मुकत का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंद मरत मुकंद ताक सेवक कौ सदा आनंद रहौ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं सेव मुकंद कर विशानं

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ते आवह सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवह संतह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवह हर ते आवह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ ते आया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वाडे अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियहो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत ताब देह अपारा। जब आकरख करत हो कबहूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपुनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरहो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारू कहा, दा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हिबखाने ओ। दोहरा सग

काम क्रोध लोभ मोह तजारी दृढ़ नाम दान इसनान सोचारी कहो नानक एहो तत् बिचारी राम नाम जप पार उतारी कहो नानक एहो तत् बिचारी राम नाम जप पार उतारी सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान सत गुर मत सुन सत कर मानी है सत गुर मत सुन सत कर मानी है दर्स ध्यान समदर्शी ब्रह्म ध्यानी शब्द ज्ञान गुर ब्रह्म ज्ञानी है गुरमत निःचल

विषमै विषम अश्चर्यै अश्चर्यमै अद्भुत परम अद्भुत गत ठानी है। सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठ आसो ही है सब नादा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास

गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तेन के काज सवारता। गोपाल तेरा आरता जो जान तुमरी भगत करंते तेन के काज सवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो कीयो हमरा खुशी करे नित जीयो। पनिया शादन निका अनाज मंगाओ सत सीका। गौ पैस मंगाओ लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन तन्ना लीवै मंगी। गौ पैस मंगाओ लावेरी

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शॉट बिख बिख खाई, माया वो परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, इकी उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसमदी, दूर अरसो कुरसो चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहद शाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाहद शाहो, जिस पास बैठिया सोही है,

ब्राह्मण गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां।

जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सलो पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियां या बुरियां वाचै।

पौड़ी नौ तरह निरंकार है ना लिए नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए। जे लोड़ है चंगा अपना करपुन हूँ नीच सदाइए। जे जरवाना पर हर जरवेश करेंदी आइए। को रहे ना पर ये पाइए, को रहे ना पर ये पाइए।

पुकार, घड़ फंडे टकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी छड़ छड़ पवेंगे यार। नानक जिन करते कारण किया,

लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लिया हौच खटिया हौच गया हौच सचियार कूड़ियार हौच पापुन विचार हौच नरक सुरग अवतार हौच हसे हौच रोवे हौच परिये हौच तोवे हौच जाति जिनसी खोवे हौच मूर्ख हौच स्याणा मोख मुक्त की सार न जाना हौच माया हौच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान में हूं।

सच्चा साहब एक पूजनी सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए।

लाल जमेरे ता मस्तक लाइए, कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलग ते आइए, फल तेरे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए, जे होवे पूर्व ले क्या ता तोड़ के ना दे पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

0: पहला सच काल कुड़वर्तिया कल काल खबेताल बियो बीज पतले गए अब क्यों गुवे दाल जे एक होए तो गुवे रुति हुर तो होए नान पह बहरा कुरे रंग न सोए पैवज खुम चढ़ाई है सरंपा होतन होए नानक भक्ति जे रपे कुड़े सोई ना कोई महला पहला
1: लपाव जो राजा मैं ता कुड़ो आसिकदार काम में सब पूछिए वे करे विचार अंधी रीत ज्ञान में होनी फाय परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊंचे को के वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोक द्वार जदि सदावे जुक्त न जाने छट बे करबार सबको पूरा पे होवे घट न कोई अख है पत प्रवाणा पिछे पाई है ता नानक तो लिया जाते महला दूजा वरी सब जगनान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सहोए अगे जात ना जोर है अगे जीव न वे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
2: पौड़ी तुर कर्म जनाग तू तो पाया था तिनी कसम ते आया इन्ना जनता के बस किछ नहीं तू वेखी जग तू पाया एक नानू तू मेरे लए का पोतो दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तू आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
1: ज्यों भावे त्यों राख।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखे राव, जात मह जो जोत मह जाता कुल कला भरपूर रहया, ओ सच्चा साहिब सुख वाले हो जिन कीर्ति सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जो कुछ करना सो कर रहे महला दूजा,
1: जो सबदं ज्ञान सबदं वे सबदं ब्राह्मण है, खत्री सबदं सूर सदन सूद सब प्राकृत है, सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने फेओ, नानक तां का दास है, सो निरंजन देव महला दूजा,
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताया तुमा, आत्मा वास दिवस जे को जाने फेओ, नानक ता का दास है, सोई निरंजन देव महला पहला,
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी
2: पौड़ी पड़े होवे गणगार ता उमी साधना मारिए, जेह काले काल ना तेवे ना उचारिए, ऐसी कला ना खेड़ी जे दरगे गए हारिए, पड़े तो मैं विचार के विचारे मोह चले सो अगे मारिए।

भगत है भव तारन अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सेवर नवनाथ निरंजन शिव संकाद समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक।

कहो टाल गोर सेविए एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दाविसाहु सजन सचा पातशाहु सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सवना दाविसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा मेरे साह मैं हर दर्शन सुख होए हमारी बेदन तू जानता साह अवर क्या जाने को

तेरा किया सच सब होए, झूठा किस को आखिए साह, दूजा नाहीं कोए, सबना विच तू बरतदा साह, सब तुझ है त्याव है दिन रात, सब तुझ ही थाव हो मांग दे मेरे साह, तू सब ना कर है एक दात, सब को तुझ ही विच है मेरे साह, तुझ ते बाहर कोई नाहे, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साह, सब तुझ ही माहे समाहे, सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह, ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे,

0: हो जुग जुग फेर विटाई ज्ञानी बुझेता है सात जुगरा संतो का धर्म गैर अथवा हो द्वापर तपह का सातगर अथवा हो काल जुगरा थगन का कूड़ गैर अथवा हो महला पहला
1: साम कह सैतम पर स्वामी सच में अच्छे साच रखे सबको ससमावे ऋग कह रहा पर भूर राम नाम देवा मैं सूर नए ले प्राचत जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर चली चंद्राव कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया

चारे वेद होए सच हार, पढ़े गुणे तन चार विचार, भाव भगत करनी सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सदगुरु।

सिमल रुख सरायरा आत दीर गत मुच ओई जिया में आस कर जाहिंद्रा सिकित फल फिक।

को परकु नेवे न कोई धर धर जू तुली नेवे सगोर होए अपराधी दुणा नेवे जो हंता मिर्गा हे शीश नवाया क्या थी है जर दे कुछ दी जाहे महला।

0: जुगल चले भाई चौकड़ मुलाया बह चौके पाया सिखा कंच डाहिया गुरबर मंथिया ओह मुआ ओह चढ़ पया बेतगा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनावियां रात दिन सीना तक पहु कती है बमन बटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको अखे पाए कोई प्राणा सुटिए पिफर पइए खोर नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर। महला पहला।
0: नाय मने पत उपजे साला ही सच सूत दरगेंद्र पाये तगना
1: तगना इंद्री तगना नारी पल के थक पवे ने दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा आपे वते वट धागे अवरा खते ले फाड़ करे भी आहो कटका गल दसे राहो सुन वेखो लोकाए विडान।

0: बड़ी साहब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कुरैसी सौ सेवक सेवा करे जिसन हुकम मनाएसी हुकम मना होवे परवान ता कसमे का महल पाईसी कसमे पावे सो करे मन हो चुकया सो फल पाईसी ता दरगे पैंदा जायसी ता दरगे पैंदा जायसी
1: गावे रागी नदी बेदी बहुपांत कर नहीं हर

0: इच्छा खाई
1: धोती टिका तै जप माली तहन मलेच्छा खाई
0: अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका भाई छोटे ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगैन तिन गलता तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद होना फी आवे ओई साथ कुड़ी रास कुड़ा वापार कूड़ बोल करे आहा धर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मत्थे टिका तेल धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर वे प्रमाण मले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखे चौंका कड़ी काज ऊपर आए बैठे कुड़िया मत फिटे वे मत फिटे यो न साडा फिटे कन फिटे फिट करेन मन जूठे चली परहेन कहो नानक सच थई है सच होवे तां सच पगे पड़ चित्ते अंदर।